कोई भी रसना बांझी ना रहे, क्योंकि गुरु नानक दे करो जे कोई दाता मांगदा है ते दाता मिलदियां ने, दाते वालियां नूं दाता भी मिल जांदा है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा नंद सिंह जी बड़ा कीमती वचन करदे सन, कहिंदे ऐ गुरसिख चात मार, धियां पुत्र मंगे ओह भी मिल गया, धन दौलत मंगिया ओह भी मिल गया, सोहणे कारोबार लई अरदासां कीतियां ओह भी मिल गए। भी ऐ गुरसिखा जे किते तू गुरु नानक मंगिया हुंदा तेनू गुरु नानक भी मिल जाणा सी। आओ भई झोली विछा के मन जोड़ के

चारू भीत बनाई राजपद रहत नहीं दिन चार तैसे ही सुख माया के उज्यो कहा गवार अजू समझ लच बिगड़िया ना अजू समझ लच बिगड़िया ना हन फजले नाम मुरा

0: शब्द प्रभु तुच्छ हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी एक मन पुरख ते आए बरदाता संत सहार सदा बखियाता तास चरण ले हृदय बसावो तौ परम गुरु नानक गुण गाओ तास चरण ले हृदय बसावो तौ परम गुरु नानक गुण गावो सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत समूह माई पाई गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ अजी कहिंदे हन जिस नूं किसे कम दा चज ना होवे तरीका ना होवे जीवन दा ढंग ना आउंदा होवे गुरु की मर्यादा विच चलण तों प्रतिकूल जिहड़ा इंसान है उस दा नाम कुछ अजी भाव खोटे अवगुणा नाल भरी होई ते शुभ गुणा तों खाली मंज कहिंदे हन मैनू हे वाहिगुरु मैं तां मंज
1: मंज कुचजी अमावन डोसड़े
0: मैं कुचजी हां मैनू मत नहीं है मैनू अकल नहीं है जिवें भाई गुरदास जी लिखदे हन होए अपराधी गुणे गार हों बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हों पर घर जो हंदा इस शब्द विच वी अवगुण गिने हन के इना वीआं अवगुणा दे मैं संयुक्त हां हे प्रभु मेरे ते दयालता करो इना अवगुणा तो मैनू बचा लवो हो अपराधी गुनहगार हां बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हां पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती आ किरत कण मैं को न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडियां सतगुर बखसंदा वी अवगुणा नाल मैं भरपूर हां पर तेरी शरण विच आया हां। संत शमेर सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन लिखिया होया पिछले दिनी पुस्तक छप गई है। उन्होंने अपनी वल्लों निम्रता

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत अन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन प्रतिमी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का अनम सिखा विचों भाई साहब भाई नंद लाल जी होए हैं गजनी के रहने वाले सिखा विचों निकट वर्तिया विचों और गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की मंजूरे निगाह होए सिखा विचों वो एक संत वो कहते हैं हे परमात्मा यारब मेरे दिल नू एक चाव ला दे नाना चाव घनेरा ला दे भाई नंद लाल की चाव लावा की चाहना है शौक की है कहते ने

शिम्बरस वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू लै

एक एहो जी जथेबंदी बनाई जिदे विच ऊच नीच नू कोई थां नहीं सी, क्योंकि हिंदुस्तान दे लोग ऊच नीच नू बहुत मनदे सन।

पावन शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तुखारी राग विच उच्चारण किया है। तुखारी संत महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सावन सरस मना घनवर सैरत आए, मैं मन तन सह पावे पिर परदेस सदाए। पिर घर नहीं आवे मरिया हावे, दामन चमक डराए। सेज अकेली खरी दुहेली, मरन भया दुख माए। हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन ना सुखावे। नानक सा सुहागण कंती, पिर कै अंक समाए।

ओ परमात्मा ओ हरि मेरे कार्य पुत्र बन के जन्म लवे। जिस तरह कोई मूर्ति की पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बिठा के ओदी पूजा करा, ओदी सेवा करा, मैं भी ओदे दर्शन करा।

इस सन्यासी पिता मेहता का लू ऐ बाल के त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर त्वाड़े कार्य ओ नारायण आप प्रगट होवेगा।

जो गुरु नानक मेरे घर प्रगट होया, उठ के खड़े हुए अपने आप नु कहंदे ने चल मना तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मैता कालू जी उठे, धन गुरु नानक साहब दे कमरे वल चल पे ते की देखते हैं, धन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे में दीवा नहीं बलता पर प्रकाश है,

मैं अरदास की थी, मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरी गोद में खेड़े है।

एकदम उठ के खड़े हो गए और तन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नू गल दे नाल लगाया ते नाल ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है।

अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना, पर देखदे आं एक मां बाप अठ धीआं पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद ओही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धीआं पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद बच्चे वड्डे हो जाते ने वह फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धीआं पुत्रां दे हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

करो, चंगियां गल्लां भी सिखाया करो, ताकि जद बच्चे वड्डे होण ते उन्हां दे मनां विच सेवा दी भावना हो, ओ परमेश्वर दे नाल प्यार करन और नाल अपने माता पिता दा भी ओ आदर मान करन। कई जगह असी गलत हो जाने हैं, क्योंकि जे असी नेक काम नहीं करते, बुराइयां करते हैं, ते फिर बच्चियां तो असी चंगे काम दी किवें उम्मीद कर सकांगे। असी आप भी चंगे होइए और बच्चियां नूं भी चंगी सिख्या देइए, ताकि स्वर्ग लभण दी लोड़ ना पवे।

काटी मप मप काटो जम की फांसी, मप मप काटो जम की फांसी, एक ऊपर जिस जम की आशा तिसकी कटिए जम की फांसा, मप मप काटो।

जी गुस्सा ना करी, बुरा ना मनाई। राजा अदम बादशाह अदम तै पिया पैरां ते, महाराज मैनू कोई कलाम बख्शो, मेरा जीवन सवर जाए। रब दा फकीर कहन लगा, तेरे पापा दा बड़ा भारी पलड़ा है, बड़ा बोझ है, ये बोझ मैं नहीं चुक सकदा। हां मैं तैनू अपने गुरु दा पता देता हां, उदे कोल जाके अर्ज कर, ते ओ कोई

पर मैं तुहाडा बचन नहीं मोड़ सकदा। मैं जावांगा जरूर तुहाडा बचन मान के, पर अपनी मेहर दा हाथ भी मेरे सिर ते रखना। उचारण करो श्री वाई। बादशाह अदम चल पिया अपनी बादशाही वाल, ते गुरु ने ऐसी लीला रची। जंगल बियाबान दे विच एक सुंदर महल है। अदम बादशाह की वेखदा है, जंगल बियाबान विच एक सुंदर महल है।

सुंदर विशाई ऐडे सुंदर गलीचे जिना उपर कूकर बैठे हैं कुत्ते बैठे हैं ते सोने दी जजीर पाई हुई है एदा की कारण है खलो गया उथे ते की तकिया दो नफर आए हैं जिना ने प्रसादे दे थाल चुके हुए हैं दो उन्होंने ओ प्रसादे एक पासे रख दिते ते कुत्तियां नूं खोल के उन्हां दा पूरा कुटापा कीता बहुत मारिया उन्होंने बड़ा चीक चिहाड़ा पाया कुत्तियां ने उस तो बाद फिर खुशबोई साबना दे नाल इशनान करा के सोने दे जंजीर पा के उस पलंग ते बठा दिता ते अगे ओ थाल रख दिते जेड़े प्रसाद दे लियाए सन प्रसाद छक लिया उन्होंने ते जदों खाली थालियां लिया पांडे लिया के वापस हो रहे सन तां अदम पुछन लगा महाराज ये की गल पहला इतना कुटापा कीता फिर उस तो बाद एडे खुशबोई साबना नाल इशनान कराया फिर सोने दे जंजीरां विच बन के सुंदर सेजा ते बिठा दिता तां ओ नफर कहण लगे बई ये बड़े अपने राज विच बड़े हंकारे होए सन ये बड़े भले मानसा नूं तंग करदे सन रिश्वत खोर सन बड़ियां बुरियाईयां करदे होंदे सी पर कते कते कोई चंगे पासे दान भी करदे होंदे सन ते जेड़ा इन्हां ने कीता होया दान उहदा तां फल इन्हां नूं मिल रिहा कि सुंदर सेजा ते बह के 36 प्रकार दे भोजन छक रहे हन ते जेड़ा इन्हां ने गरीबां नूं तंग कीता है वह कुटापा इन्हां नूं रोज होंदा है और होंदा रहेगा ते अदम कहण लगा महाराज ये तीसरा पलंग खाली पे है ये कादे वास्ते है अखे अदम है अपनी बादशाही विच जा रहा है।

सलामत अपने गुरु दे चरणा विच आ गया ते चरण पकड़ दे महाराज मैनू सिमरन दी दात दियो कर देवो मेरे नाम जपदा रहा तेरा जी दुनिया है मुसा

गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ माचे धर्म अधूरे करमिया।